अब जो मिले हैं तो बाहों को बाहों में रहने दे साजना, सच्चे के झूठे हैं होठों को होठों से कहने दे साजना, ना ना अब जो मिले हैं तो हाय रे साजना।

0: traffic and travel.
1: I'm Louisa Gale, and it's slow now southbound on the M6. An accident partially blocking the carriageway just prior to 6 for Spaghetti, although moving a lot better now northbound on the M5 from Junction 4 for Lydia Ash up towards Junction 3 for Hales Owen, following an incident earlier near to Frankley services. It is looking slow still heading out of Hagley through Stoke and Bridge, out west on the A456 Kidderminster Road south towards an accident at Broom Lane. And in Leicester and Aylston, the traffic lights on the A563 Ackley Way at the Port Pie roundabout are still not working. And from this morning's fire alert at Birmingham New Street, there's still delays of half an hour on both Avanti West Coast and cross-country train services between Birmingham New Street and Edinburgh, with delays of 20 minutes between New Street and London Euston.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leicester, diar ho jao ek yaadgar Bollywood night ke liye. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
3: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 0786-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: ਭਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
5: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
4: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danu. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
9: साउथ हॉल ट्रेवल, एट ऑल प्रोटेक्टेड।
10: हीरो कभी वापस नहीं आए।
11: Did you hear that?
12: 1995 पंजाब, जहाँ एक तरफ पुलिस फोर्स मिलिटेंसी हटाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे।
13: Get ready for one of the boldest and darkest chapter of India's history.
14: मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार से सीधे पूछती हूँ, कहाँ है जसवंत सिंह?
13: सतलुज on Hindi Z5.
15: यहाँ जो हो रहा है वो दुनिया को बताने का टाइम आ गया जैसी।
0: Listen back to your favorite shows by logging on to LeicaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app.
16: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at RadioCentre.org.
0: Next, the Ravi Sharma Show with Ravi Sharma on Leica Radio Midlands.

0: UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to LeicaRadio.com and listen at LeicaRadio.com. Or you can advertise on the Leica Radio network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: Very good morning. आज के मौसम पर भाई ध्यान दें तो गर्मी तो है पर कितनी गर्मी अब तो ये देखना है. Well, this afternoon and this morning will continue widely sunny and hot. कितना hot? पर लंदन व आसपास के इलाकों में 30 से ऊपर सेंटीग्रेड जो है वो तापमान रहेगा और मिडलैंड में भी 30 से ऊपर ही है. अब साहब ऐसे में गर्मी का प्रकोप आप देख सकते हैं. ठंडी हवाएं चलेंगी लेकिन बहुत ज्यादा ठंड का एहसास नहीं होगा.
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा.

0: good morning. स्वागत है मनोरंजन की दुनिया में श्रोताओं का, संगीत प्रेमियों का। शुक्रवार वर्ष 2026 की जुलाई महीने की 10 तारीख हमारी आपकी एक और संगीतमय मुलाकात, मीठे मीठे प्यारे प्यारे गीतों का साथ और साहब कुछ अटपटी बातों की सौगात। अब से लेकर दोपहर बाद 1 बजे तक मैं रवि शर्मा आपकी सेवा में हाजिर हूँ और बहनों भाइयों हाजिर रहेंगे बहुत सारे, क्या कहें, गीत संगीत सूचनाएं समाचार चिंतन विचार और साहब कुछ जानकारियां। तैयार हैं आप?
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Back to back hits across the Leica Radio network.
0: बहारों का मौसम है, त्योहारों का मौसम है। अरे साहब ये बाहर कुछ ज्यादा नहीं हो गई है? नहीं मतलब नहीं, हमें धूप अच्छी लगती है, गर्माहट अच्छी लगती है इस देश में, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर क्या कहते हैं? कहते हैं तौबा तौबा।

0: मनोरंजन
1: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

0: ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया। गलत। अरे साहब, गोरी ने घूंघट उठाया है गर्मी से घबराकर, पसीने से डर के। ठंडी हवाएं पता नहीं कहां खो गई हैं। बैक टू बैक गीत सुनवाए हमने इस तरह से, भाई कार्यक्रम का आगाज हुआ। माय नेम इज रवि शर्मा। फर्स्ट थैंक्स टू काजल, शी वॉन्ट बी बैक टुमारो मॉर्निंग, शी विल बी बैक ऑन मंडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो लेकर के। और भाई अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको पाउंड का रेट बताते हैं।
1: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं, आज का रेट बता रहे हैं। भाई अगर आप लोगों को पैसे भिजवाना चाहते हैं, रेट अब भी अच्छा चल रहा है आज का रेट। वेल टुडे दे आर गिविंग 127.6 इंडियन रुपीज फॉर वन पाउंड। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप के माध्यम से आप पैसे भिजवा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मोरक्को को हराकर फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और साहब अब अगले मंगलवार को सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन या बेल्जियम से होगा। और आपको बता दें कि भाई आज जो मैच होने जा रहा है वो स्पेन और बेल्जियम के बीच है। इन दोनों में से जो विजेता होगा वो फ्रांस से भिड़ेगा मंगलवार को, और शाम 8 बजे मैच शुरू होगा। भाई मैच के बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ये याद दिलाते हुए कि भाई जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं जो ये वर्ल्ड कप फुटबॉल के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाते हैं, वो कहते हैं कि 15 मिनट फ्री लीगल एडवाइस आप उनसे ले सकते हैं। वे हैं रैक लॉ वाले। आपको जब उनसे संपर्क करें तो लाइका मेंशन करना होगा, डोंट फॉरगेट दैट।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
3: Ye hai Leica Radio.
4: Leica Radio.
5: Leicester, tayar ho jao ek yaadgar Bollywood night ke liye. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Amantrika, or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
6: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: Aapke saamne ek red button hai. नहीं दबाना था।
8: The madness is back. धमाल 4.
9: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
8: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
10: गुलाबी बिना चटनी कैसे बनी?
8: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
11: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आके कैसे आ जाता?
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
12: high appreciation
13: in Dubai.

0: छलकाते रहो, पीते रहो और पिलाते रहो भाई, सुबह सुबह ऐसे गाने सुनवाते रहो, शर्म करो शर्मा जी। कुछ लोग भाई मुफ्त की मिलती है तो टॉप गियर लगा देती है। नाम किसी का भी लगे, रफी साहब की आवाज में आपने ये गीत सुना, बड़ा नशीला गीत था, बहुत प्यारा।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
0: लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के खास खास समाचार सुनिए। एंडी बर्नहम लेबर पार्टी के अगले नेता और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गए हैं। भाई कल गुरुवार से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया यानी नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है, उसके बाद अब तक 322 लेबर मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के, वो बर्नहम की हिमायत में सामने आ गए हैं। फिलहाल वो इस पद के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित करने वाले इकलौते उम्मीदवार हैं। अगर उम्मीद के मुताबिक कोई दूसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं आता है तो अगले सप्ताह बर्नहम को लेबर पार्टी का लीडर घोषित कर दिया जाएगा और इसके बाद वो 20 जुलाई को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। ये ग्रेटर मैनचेस्टर के फॉर्मर मेयर बर्नहम के लिए सत्ता तक पहुंचने का एक बड़ा ही असाधारण सफर होगा। उन्होंने कुछ ही सप्ताह पहले मेकरफील्ड का जो उपचुनाव जीता था। एक बयान में बर्नहम ने कहा कि पार्टी का नेता बनाने के लिए उनका नामांकन, उनका नॉमिनेशन करने वाले लेबर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रति वो गहरे आभारी हैं, थैंक्स करते हैं। ये तो थी अपने घर की खबर। अब इंटरनेशनल खबरों में जो खबर छाई हुई है वो है, ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग ने संसद सदस्य इस्माइल कोसारी ने वार्निंग दी है कि यूएई को अमेरिका का सहयोग करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें भाई, वो जो खुशियां मनाई जा रही थी, सेलिब्रेशन चल रहे थे और क्रेडिट लूटने की वाह वाह बटोरने की जो प्रक्रिया चल रही थी, अब उस पर जैसे ब्रेक लगने लगा है क्योंकि अमेरिकी हमले और ईरान की ओर से भी जवाबी हमले जो है वो जारी हैं, दोनों तरफ से जैसे युद्ध शुरू हो गया है। ईरानी संसद के सुरक्षा आयोग के मेंबर ने हाल ही में जो हमले हुए हैं उनके पीछे संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का हाथ होने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि इन कार्रवाइयों से यूएई ने खुद को ईरान के दुश्मनों के पाले में खड़ा कर दिया है और उसे पता होना चाहिए कि इस हिमायत की कीमत बहुत भारी होगी। कोसारी ने बताया कि हथियारबंद सिक्योरिटी फोर्सेस के जनरल स्टाफ की पिछली चेतावनी के अनुसार आक्रामक बलों को किसी भी प्रकार का समर्थन देने पर ईरान की ओर से करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले भाई हर रात होते हैं और ईरान का दावा बुशहर का न्यूक्लियर पावर प्लांट भी निशाने पर है। भारत की बात करें, भारत से आने वाली खबरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक जनसभा को एड्रेस किया है। उन्होंने अपने भाषण में विपक्षी दलों पर कई इल्जाम लगाए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग आज आस्था की बात करते हैं, उन्होंने अयोध्या में हमारे पवित्र हनुमान गढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था। क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवा पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये सब कर सकती हैं? अगर नहीं करवा पाएंगी तो ये पाप क्यों करवाया गया? मंशा साफ है तो काम अपने आप होते हैं, नीति स्पष्ट हो तो नियंता अपने आप सहयोग करता है, ये आज अयोध्या में दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा, लेकिन सरकारों ने यह काम किया है और छुटपुट जो कमियां हैं भाई उसकी जांच भी चल रही है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के नेता अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और अन्य कथित गड़बड़ियों को लेकर के लगातार आरोप लगाते रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें शामिल बड़े लोगों को सरकार बचा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ऑस्ट्रेलिया का दौरा खत्म करके अब न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए। वे ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न से ऑकलैंड के लिए चल पड़े हैं, रवाना हुए हैं। ये 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री की यात्रा पर न्यूजीलैंड में भारतीय हाई कमिश्नर मुआनपुई सयावी ने एक इंटरव्यू में कहा कि यह निश्चित रूप से बेहद अहम यात्रा है, क्योंकि साझेदार देशों के नेताओं का आमने सामने मिलना बहुत जरूरी होता है। इससे पहले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने पिछले साल मार्च में भारत का दौरा किया था। स्पेन में जंगल की आग से 11 लोगों की मौत हो गई है और साउथ यूरोप में हीट वेव जारी है। स्पेन के दक्षिण पूर्वी प्रांत अल्मेरिया के लॉस गायारदोस इलाके में लगी जंगल की आग में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं और इस घटना में 6 लोग जख्मी भी हुए हैं। कुछ मृतक उन गाड़ियों के अंदर मिले जिन्हें आग ने अपनी चपेट में ले लिया। लोगों का कहना है कि आग बिजली की गिरी हुई लाइन की वजह से लगी और देखते ही देखते पास के जंगलों में फैल गई। इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक आग की वजह से कई सड़कें बंद करनी पड़ी और करीब 1000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा समाप्त कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया अपना दौरा समाप्त करने से पहले। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेट कप्तान स्टीव वॉ और अन्य क्रिकेट खिलाड़ियों से मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों में क्रिकेट के प्रति जो जुनून है ना, वो लोगों को करीब ला रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई पर कुछ यूरोपियन लीडर्स की चुप्पी के बीच जर्मनी में ईरान के डिप्लोमेट्स ने कहा है कि व्हाइट हाउस के कथित अपराधों को सामान्य मान लेना, नॉर्मल मान लेना, किसी की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक कल गुरुवार को जारी एक संदेश में माजिद नीली ने कहा कि अमेरिका ने चीन तुर्कमेनिस्तान ईरान रेल कॉरिडोर पर स्थित अगतापेह खान पुल को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि यह पुल महज एक रेलवे का ढांचा नहीं था, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट और व्यापार मार्ग का अहम हिस्सा था। यूक्रेन की फौज ने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के आसपास अपने हमले तेज कर दिए हैं। क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाली जमीनी रास्तों पर हमलों के बाद अब यूक्रेन समुद्री सप्लाई मार्गों को भी, रास्तों को भी निशाना बना रहा है। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवदी का कहना है कि पिछले 4 दिनों में आजोव सागर में कम से कम 25 जहाजों को निशाना बनाया गया है और उनमें आग लग गई है। आजोव सी केर्च के जरिए ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है। यूक्रेन की फौज का दावा है कि अब तक 36 जहाजों को उन्होंने निशाना बनाया है और इनमें से ज्यादातर रूस के तथाकथित शैडो फ्लीट का हिस्सा है। ईरान और अमेरिका के बीच कल भी हमलों का सिलसिला जारी रहा। इसी दौरान बता रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की तादाद में काफी गिरावट आ गई है। अमेरिका का कहना है कि उसने हॉर्मुज के पास स्थित कुछ ठिकानों सहित 90 फौजी लक्ष्यों को अपना निशाना बनाया। वहीं ईरान का दावा है कि पिछले 2 दिनों में अमेरिकी हमलों में 14 आम लोगों की मौत हुई है, यानी वो आम ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने यह भी बताया है कि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के आसपास कुछ ठिकानों पर अटैक हुए हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में भाई, क्षमा कीजिए साहब, थोड़ी सी एक खबर रह गई फीफा फुटबॉल की। वैसे तो हम जानकारी देते रहते हैं, लेकिन चलिए ये खबर अब शुरू कर ही दी है तो बता दें आपको कि फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मोरक्को को हराकर फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और अब आज जो मुकाबला है, आज भिड़ंत हो रही है स्पेन और बेल्जियम की। इन दोनों टीमों में से जो टीम जीतेगी उसका फ्रांस से मुकाबला होगा मंगलवार को सेमीफाइनल में। तो साहब ये जानकारी थी अंतिम आज की प्रमुख समाचारों की। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है Leica Radio Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.
0: और अब लौट आइए संगीत की ओर, सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

0: ओल्ड थंडर शॉवर्स कह रहे हैं, पर पहली बार ऐसा देख रहा हूं मैं कि लंदन के मुकाबले मिडलैंड में टेम्परेचर ज्यादा है, वहां 33 डिग्री और यहां पर 30 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call South All Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.

स्वागत है मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में श्रोताओं का। और ये दूसरा दौर भाई चिंतन से शुरू होता है, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और चिंतन शुरू करने से पहले भाई आपको बता देंगे, भारत और इंग्लैंड के बीच महिलाओं का टेस्ट मैच खेला जा रहा है लॉर्ड्स के मैदान में। पहला मैच महिलाओं का भाई ये कहते हैं कि लॉर्ड्स के मैदान में, तो ये पहला ही टेस्ट मैच है महिलाओं का। आज से 13 जुलाई तक ये मैच खेला जाएगा। बता दें कि इंग्लिश विमन ने टॉस जीता है और उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया है। स्कोर के आंकड़े हम आगे चलकर आपको बताते रहेंगे, लेकिन ये एक बड़ी भाई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना मानी जाएगी, क्योंकि बरसों पहले आज ही के दिन पुरुषों का भी पहला मैच जो है क्रिकेट का, वो लॉर्ड्स के मैदान में खेला गया था। आइए चिंतन सुनवाते हैं आपको। आज के चिंतन के लिए आलेख एक बार फिर से हमें भिजवाया है वुल्वरहैम्पटन से डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा जी ने। कहते हैं, भारत के एक गांव में मैं किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने गया था। मेरे साथ मेरा एक मित्र भी था, विदेशी। उसने देखा कि शव यात्रा में, यानी फ्यूनरल प्रोसेशन में, जो लोग जा रहे थे शमशान की ओर, उन सब के हाथों में थोड़ा बहुत ईंधन था, लकड़ी या जो गोहे होते हैं भाई वहां शव को जलाने के लिए, छोटे गांवों में ऐसे ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है जो वहीं की प्रोडक्ट होता है। तो जो उपले बनाए जाते हैं गोबर से और फिर उनको जला करके किचन से लेकर के कई जगह पर उनका इस्तेमाल होता है जलाने के लिए, आग जलाने के लिए। तो हर व्यक्ति जो प्रोसेशन में था, जो शव यात्रा में शामिल था, अपने साथ दो उपले हाथ में लेकर के या सर पे रख करके चल रहा था। विदेशी मेहमान हैरान था, ये लोग क्या लेकर जा रहे हैं। तो मैंने उसे समझाया कि शव दाह के लिए, यानी डेड बॉडीज को जलाने के लिए हमारे यहाँ जो ईंधन इस्तेमाल होता है, वो हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा अपने घर से लेके आता है, परिवार के प्रति संवेदना जताता है, मृतक के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता है, और इस काम में वो परिवार का हाथ बटाता है। कमाल है, यानी शव दाह में भी, यानी क्रेमेटोरियम में, क्रेमेशन के काम में भी सहयोग देते हैं लोग, कंट्रीब्यूट करते हैं लोग। तो मैंने उसे समझाया कि यह सिलसिला जन्म से ही शुरू हो जाता है। गांव में जो कोऑपरेटिव फीलिंग्स हैं, वो जन्म से ही शुरू हो जाती है। व्यक्ति जो है जब पैदा होता है, बच्चा, शिशु, तो वो पूरे गांव की जिम्मेदारी माना जाता है। इसलिए लोग अलग अलग तरीकों से जिस घर में, जिस परिवार में बच्चा पैदा होता है, सहयोग देते हैं, शगन के रूप में, गिफ्ट के रूप में, आशीर्वाद के रूप में। फिर यह सिलसिला चलता रहता है, उसके हर काम में कंट्रीब्यूशन पूरे गांव का। शादी होती है तो शगन के रूप में लोग पैसा देते हैं, बेटी की विदाई में, बेटी की शादी में पूरा गांव जिम्मेदारी निभाता है। बारात आती है तो पूरा गांव खिलाता है, पूरा गांव लुक आफ्टर करता है।

एक परिवार की बेटी पूरे गांव की बेटी मानी जाती है। इसके बाद और भी कई ऐसे अवसर आते हैं। अब देखिए, दर्जी कपड़े सीता है, अनाज नहीं उगाता है, लेकिन जब फसल कटती है तो उसके घर पर अनाज पहुंच जाता है पूरे गांव के जमींदारों की ओर से। चरमकार जूते बनाता है, पूरे गांव को जूते पहनाता है। अनाज नहीं उगाता है, लेकिन फसल कटते ही उसके हिस्से का अनाज उसके घर पहुंच जाता है। पूरा गांव मिलकर के एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाता है और कोऑपरेटिव की जो विचार है, धारा है, कोऑपरेशन का जो विचार है, वो यहीं से शुरू होता है। अब तो बड़े बड़े कारखाने कोऑपरेटिव रूप से चल रहे हैं। सहकारिता का विचार भारत के गांव से शुरू होता है। लोहार लोहे का काम करता है, अनाज नहीं उगाता है, पर उसके घर भी अनाज समय पर पहुंच जाता है। जो जिस काम को करता है पूरे गांव के लिए करता है, सिर्फ अपने लिए नहीं करता है। आज भी ये परंपरा देखी जा रही है। तभी तो भारत का वो श्लोक, वो वही संवाद, वो मुहावरा जो मैं कई बार दोहरा चुका हूं, डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा कहते हैं कि आपका वही विचार मैं आज के चिंतन में भिजवाता हूं, वसुधैव कुटुंबकम। जब पूरा एक गांव परिवार की तरह हो सकता है, तो भारतीय शास्त्र तो पूरे संसार को, पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में बताते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। तुम्हारी आवश्यकताएं सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, हर कोई जिम्मेदार है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। मिलजुल कर दायित्व निभाएं, एक दूसरे के काम आए, यही सहकारिता है, यही कोऑपरेशन है, यही सहयोग है।

0: कोऑपरेटिव विचारधारा, सहकारिता का विचार। गांव में ये भावना देखी जाती है, पूरे विश्व में होनी चाहिए ना, साथ ही हाथ बढ़ाना। आज का चिंतन, आज का विचार,
1: चिंतन चिंतन।
0: हमारी प्रार्थनाएं सामूहिक हों, हमारे लिए आशीर्वाद भी सबके लिए समान मिले। जरूरतमंद कहीं भी हो, मजबूर कहीं भी हो, दुखी आहत मुसीबत में कोई कहीं भी हो, मदद हर तरफ से उसके लिए उपलब्ध होनी चाहिए। हमारे भाई एक अमीन चतुर साहब लिखते हैं कि आज जुमा है, जुमा मुबारक हो। लेट्स आवर हार्ट्स यूनाइट इन प्रेयर्स फॉर द ऑप्रेस्ड। अल्लाह उन्हें स्ट्रेंथ दे भाई, जरूरतमंदों को, और पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा राज्य, पूरा देश, पूरा विश्व उनके बारे में सोचे जो संकट के दौर से गुजर रहे हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो मजबूर हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं। आज का चिंतन भाई हमारे बहुत सारे श्रोताओं का पसंदीदा है साबित हो रहा, वही सब लोग लिख करके भेज रहे हैं। वत्सला जी खासकर संस्कृत में हमारी चिंतन की प्रशंसा लिखती हैं किसी श्लोक के साथ जोड़कर। आज के चिंतन के लिए आपने लिखा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण परम धर्म स्वतनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परम धर्म भयावह। भाई पराया धर्म तो वो होता है कि जो पशुओं का हो, स्वधर्म तो मनुष्यों का जो धर्म है वो श्रेष्ठ है, इसका अर्थ ये निकलता है। और परम धर्म जो मनुष्यों के लिए है, प्राणियों के लिए है, वो है एक दूसरे के काम आना। सुनीता शर्मा जी आपको अच्छा लगा आज का चिंतन, गीत भी पसंद आया, थैंक यू। भाई बता दूं आपको कि आज के चिंतन के लिए आलेख हमें वुलोर हंटन से डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा ने भिजवाया था। राजीव पटेल कहते हैं कि मैं तो चिंतन का इंतजार करता हूं, प्रोग्राम तो आपका शुरू से सुनता हूं, लेकिन प्रतीक्षा रहती है चिंतन की, अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। मिल्टन कीन से आपने लिखा है। शेखर जी आपका संदेश भी मिला है, थैंक यू वेरी मच। देशराज बैसल साहब कहते हैं कभी कभी हर गीत आपका जो सुनता हूं और पुराना गीत आता तो ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए बजाया जा रहा है। होता है, मैं एक सत्संग में जाया करता था तो वहां एक महात्मा जी प्रवचन करते थे और वो जो भी बात कहते मुझे ऐसा लगता जैसे मुझे निशाना बनाकर वो बात कही जा रही है, मुझे समझाया जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि कुछ सीख ले, कुछ कर ले। भाई इस तरह से अगर हम लेते हैं हर बात को तो नेचुरली वो असर करती है। अनिल सोनी साहब वियाना में सुन रहे हैं। रागिनी आपका संदेश मिला, थैंक यू वेरी मच। और ये दूसरी रागिनी है, एक रागिनी आज अपना जन्मदिन मना रही है। रागू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपकी मम्मी, आपकी नानी, आपके मामाज, आपके कजन्स, आपके परिवार के सभी लोग और आपका भाई नॉर्वे से आपको मंगल कामनाएं भिजवा रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू। निर्मला जी थैंक यू वेरी मच। सहर, महेंद्र पटेल, आनंद तोमर, आंटी जी कहती हैं सलाम वालेकुम, जजाकल्ला। आप हमें मुस्कुराहट देते हैं, हंसी देते हैं, आपकी चटपटी बातें सुनकर के मैं हंसती हूं, पूरा दिन अच्छा बन जाता है, थैंक यू आंटी जी। भाई चिंतन समेटने से पहले याद दिला दूं कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे के खबरों के बाद प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. एक पाउंड के बदले 127.6 रुपीस, इंडियन रुपीस दे रहे हैं और कहते हैं भाई भारत पैसे भिजवाने का सही समय है, सही अवसर है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द SBI योनो मोबाइल ऐप। terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Leica Radio.
2: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: फीफा फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, महाकुंभ है फुटबॉल का, खचाखच भीड़ देख करके लगता है भाई फुटबॉल के दीवाने दुनिया में बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी संख्या में, और ये वर्ल्ड कप चल रहा है तो कल के मैच का नतीजा तो आप जान चुके हैं कि भाई फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हरा करके अब सेमी में जगह बना ली है। अब इनके मुकाबले में बता दूं कि आज जो दूसरा क्वार्टर फाइनल का मैच खेला जा रहा है वो है स्पेन और बेल्जियम के बीच, और इनमें से जो टीम जीतेगी वो मंगलवार को फ्रांस से भिड़ेगी। तो साहब इंतजार कीजिए, शाम को मैच खेला जाएगा 8 बजे, देखिएगा या फिर लाइक नेटवर्क से जुड़े रहिएगा, हम हर मैच के बारे में जानकारी देते रहते हैं।
2: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
0: और भाई रैक लॉ वाले हमारे जो स्पॉन्सर हैं वो कहते हैं कि अगर आप हमसे संपर्क करें तो 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस के अधिकारी हैं आप, अगर आप लाइका मेंशन करेंगे तो संपर्क करते हुए रैक लॉ को कॉन्टेक्ट करें और लाइका शब्द कहें तो यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव 15 मिनट्स free legal advice.
2: This is Leica Radio.
4: List up, stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 749. Lela Medium Atta 10 kg, just 399. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 149. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 399. मिडो योगर्ट 10 kg 8.99, करेला और लॉन्ग दूधी 2.99 पर किलो। ऑफर्स वैलिड फ्रॉम 6 जुलाई टू 2 अगस्त एट फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN।
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
7: Southall Travel, at all protected.
8: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
9: Leicester Mellor is back. And the

0: बैक टू बैक दो गीत हमने परोसे आपको। और भाई अब गीत संगीत का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हुए याद दिला दूं आपको कि आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क, लाइका गोल्ड के माध्यम से।
1: लाइका रेडियो नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग इन ग्रेटर लंदन, ग्रेटर मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स विद द यूकेस बिगेस्ट एशियन हिट्स। ये है लाइका रेडियो, Feel-good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

कुछ गीत संगीतकारों की पहचान बन जाते हैं। ओपी नैयर साहब ने कुछ ऐसे गीत बनाए, ऐसी धुनें रची, कानों के रास्ते सीधे दिल में उतर गई, और कभी कभी वो इतनी मुश्किल लगती है साहब। मैं कभी कभी हारमोनियम पर बजाने की कोशिश करता हूं तो कैसे कठिन स्वर लगाए ओपी नैयर साहब ने।

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: What a song, भाई ओपी नैयर की बनाई धुन पर हमसाया फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में. और भाई जैसा मैंने कहा कि कुछ गीत ऐसे हैं जो बार बार सुनने पर भी लगता है कि कुछ नयापन है उनमें. This was one of them. हमारे बहुत सारे श्रोताओं को अच्छा लगा है, थैंक यू वेरी मच. और भाई अब बुशी से जगदीश जी आपका संदेश मिला, अनिल सोनी जी थैंक यू, और सिलाव वाली रानी जी, जैस्मीन आपका संदेश समय पर मिल जाता है, लगातार आप जुड़ी हैं. और हमारे खान साहब थैंक यू वेरी मच, खान साहब मोहम्मद खान आपका संदेश भी मिल गया है, आप जुड़े हुए हैं लाइका रेडियो नेटवर्क के कार्यक्रमों के साथ. स्लो से पम्मी हमारे साथ रहते हैं बिल्कुल भाई हर प्रोग्राम में. और अरुणा भूपेंद्र पटेल थैंक यू वेरी मच, आपका भी संदेश मिल गया है. कुछ नए श्रोता आते हैं भाई तो उनका भी स्वागत है, और जो कुछ पुराने कभी कभी आते हैं, कंचन अग्निहोत्री आपका संदेश मिल गया है, आप सुनती हैं प्रोग्राम को सराहती हैं, ये बात हमें भाती है. और क्रोइडन में महेंद्र पटेल, आनंद तोमर जी आपका संदेश भी यहाँ है स्क्रीन पर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद.
0: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
2: लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट्स. और भाई हमारा नया एपिसोड आ गया है लाइका एक्स्ट्रा पर जो है, अब आप पॉडकास्ट देखते हैं जुड़ जाइए इनके साथ. भाई ईस्ट अफ्रीकन एशियंस के बारे में इस बार नया एपिसोड है, और ये प्रकाश डालता है उन घटनाओं पर, उन भाई उस इतिहास पर जिसमें अपने देश से उखड़े और जाकर के ईस्ट अफ्रीका में लोगों से वहां जुड़े, वहां काम किए, फिर वहां से फिर उखड़े तो अपनी आइडेंटिटी अपनी जड़ों से जुड़े रहे, और किस किस संघर्ष का सामना किया और कैसे कामयाबियां हासिल की, बहुत सारी बातों पर रोशनी डाली गई है. जरूर देखिएगा लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
3: Ye hai
0: Leica Radio.
4: The Janan and J. Dodd summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J. Dodd summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
5: ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ. ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ.
6: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ.
5: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ. देखो सरपंच 10 जुलाई को तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च.
7: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry 16th to the 19th of July. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywood's Surinderella, panto fun for all the family.
8: Radio partner, Leica Radio.

बिक जाए पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट

0: गीत प्रेम धवन का गीत और संगीत भाई ले दे सैया ओढ़नी पंजाबी तिलेदार मस्ती भरा गीत। और ये गीत भाई जन्मदिन मनाने वालों के नाम कर देते हैं। आज सुनील गावस्कर अपना जन्मदिन मना रहे क्रिकेटर भाई। क्रिकेट की बात आई तो ये भी बता दें कि भारत और महिलाओं का पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स के मैच बैटिंग कर रहा है। 54 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अभी तक टेस्ट मैच है ये, जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। आराम आपको स्कोर के आंकड़े बताते रहेंगे। भारत का स्कोर भाई, इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला किया। भारत की महिलाओं ने 54 रन बनाए हैं, 2 विकेट गंवाए हैं। खेल आगे बढ़ेगा, स्कोर हम बताते रहेंगे।
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: यू सिंग लाइक किशोर बट शादी का डेट
0: ओ यस सितंबर 8
1: ओह वेरी लेट
0: डार्लिंग वेट

0: वंडरफुल।
1: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया जले छम छम छम छम छम छम छम। एक गढ़ हम तुम पे दिल्ली सार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है।

0: मैं क्या गीत बना, कुछ हटकर बना, कुछ कटकर बना, कुछ बटकर बना, लेकिन इसके पीछे भाई जो संघर्ष की कथा थी वो भी इसके संगीतकार बिदु साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि कैसे इस गीत की रचना हुई थी, कैसे नाजिया हसन की तलाश पूरी हुई थी और कैसे फिर भाई लंदन में उनके साथ कुछ गीतों की रिकॉर्डिंग का सिलसिला बना था। तो साहब ये गीत आपने नाजिया हसन की आवाज़ में सुना, दुख की बात है कि यंग एज में ये गायिका जो है नहीं रही, वरना तो साहब और ऐसे कुछ गीत सुनने को मिलते। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके पाउंड का क्या रेट दे रहे हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK, for £1 they are giving in Indian currency 127.6 rupees maximum. 127 rupees aur 60 paise is samay de rahe hain aur keh rahe hain ki bhai you can transfer via branch online or by using the SBI Yono mobile app. But ध्यान रहे, terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend Live in Concert, featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Amantrika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
3: या Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.

0: Disha Basmati Rice, available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: हीरो कभी वापस नहीं आए।
4: Did you hear that?
5: 1995 पंजाब, जहाँ एक तरफ पुलिस फोर्स मिलिटेंसी हटाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे।
6: Get ready for one of the boldest and darkest chapter of India's history.
7: मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार से सीधे पूछती हूँ, कहाँ है जसवंत सिंह?
6: सतलुज ऑन हिंदी Z5।
8: यहाँ जो हो रहा है वो दुनिया को बताने का टाइम आ गया जैसी।
6: The Janaan and J-Dot summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janaan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janaan and J-Dot summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
9: Your favorite show on Leica Radio Midlands. You can now listen back at leicaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want.
10: Two devastating earthquakes have hit Venezuela and survivors urgently need support. Please help now. Go to dec.org.uk to donate. Thank you.
11: This is Leica Radio. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favourite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
12: और भैनों भाइयों, आप जानते हैं कि इस सप्ताह के कलाकार का नाम है गीतकार शकील बदायूनी। भाई शकील साहब बदायूं के रहने वाले थे, इसलिए बदायूनी अपने नाम के साथ उन्होंने अपने नगर का नाम भी मशहूर कर दिया। और शकील साहब ने इतने सारे गीत लिखे और इतने न्यारे और प्यारे गीत लिखे कि भाई सप्ताह भर आप सुनते रहे हैं, सराहते रहे हैं। एक गीत ऐसा भी है उनका जिसमें लता जी ने नहीं, आशा जी ने नहीं, उषा जी ने नहीं, बल्कि तीनों बहनों ने मिलकर की आवाज दी, जिस गीत को रवि साहब ने धुन बनाई और गीत कुछ ऐसा बना।

0: लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और आशा भोसले तीनों बहनों ने आवाज दी थी इस गीत को। रवि साहब की बनाई धुन पर गृहस्थी फिल्म का गीत था, जिसके गीत लिखे थे भाई फिल्म के शकील बदायूनी ने। भाई शकील साहब इस सप्ताह के कलाकार हैं, और आपको बता दूं कि बदायूं उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ 3 अगस्त 1916 में। 1936 में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, और भाई यूनिवर्सिटी में ही वो जो इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटी मुशायरे होती थी, वहां से इनकी शायरी की शुरुआत हुई। और जब ये भाई दिल्ली मूव हुए तो ये मुशायरों में शिरकत का सिलसिला जो है और आगे बढ़ा। वैसे 1940 में उनको एक अवार्ड मिला था, अरे भाई और तो बहुत सारे अवार्ड मिले, एक अवार्ड उनको मिला, उनकी शादी हुई, निकाह हुआ सलमा के साथ, तो दूर की रिश्तेदार थी इनकी। लेकिन जब ये मुंबई मूव हुए तो साहब इनका जो टैलेंट है वो निखर के फिल्मों के माध्यम से घर घर तक और जन जन तक पहुंचा। आर्टिस्ट ऑफ द वीक शकील बदायूनी साहब, उनका लिखा गीत सुनवाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये लाइका रेडियो नेटवर्क है, आप सुन रहे हैं मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट डेरी वैली .net।

भाई बात यह, गीत तो अच्छा है लेकिन ये अब कल परसों ही बजा है तो इसे इतना जल्दी और उसी टाइम में बजा है, डिफरेंट टाइम में बजा हो ना, सुबह के कार्यक्रम में काजल ने बजाया और फिर ये कंप्यूटर साहब ने गीत जो है मेरे कार्यक्रम में रख दिया। पर थोड़ा गैप कर देना, मैं जानता हूँ कि देर इज ए लिमिट। आइए ऐसा गीत सुनवाते हैं जो कुछ दिन पहले बजा हो और जिसकी कुछ वजह हो आज बजाने की। वजह यह है कि गायिका का जन्मदिन है आज। Many, many happy returns of the day to Parveen Sultana.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और बहनों भाइयों, गीत हमने आपको सुनवाया परवीन सुल्ताना की आवाज में, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। केटला बरसनी थेगी छे दीकरी, नन ऑफ योर बिजनेस। 10 जुलाई 1950 में जन्मी थी भाई। बहुत कम गीत गाए फिल्मों के लिए इन्होंने, लेकिन वैसे भाई ये गायिका के रूप में बड़ी प्रतिष्ठित हैं और बहुत सारे अवार्ड इनके नाम हैं। भारत सरकार से भी पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। 10 जुलाई 1950 में इनका जन्म हुआ था। आज जन्मदिन मनाने वालों में कुछ और नाम भी शामिल हैं, और भाई बताएं तो भारत के रक्षा मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी भी आज ही के दिन जन्मे थे। 10 जुलाई 1951 में उनका जन्म हुआ था और चंदौली डिस्ट्रिक्ट में जन्मे थे वो। इसके अलावा भाई आज सुनील गावस्कर अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मुंबई में 1949 में जन्मे थे 10 जुलाई को। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे टू भाई जन्मदिन मनाने वालों को। और हाँ, सिल्विया और म्यूरियल कह रही है हमारी बुआ का भी तो जन्मदिन आज ही है, तो भाई आपकी बुआ को भी हैप्पी बर्थडे। और कहती है कोई अंग्रेजी गीत सुना दीजिए। वही अंग्रेजी भी हिंदी में सुनाएंगे हम तो सुनते रहिएगा। आपकी बुआ जी को आपकी मम्मी की ओर से, पापा की ओर से, आपके सारे परिवार की ओर से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। और किसका जन्मदिन है भाई आपके परिवार में, घर में किसी का जन्मदिन है तो हमारी ओर से शुभकामनाएं स्वीकार कीजिएगा। जो गीत पसंद आए उसे अपने नाम कीजिएगा।
3: ये है लाइका रेडियो। दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस। विद अ रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड फ्लेवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन मेक एवरी मील मेमोरेबल।

ना तू जाने ना मैं जानू, भाई मैं तो जानता हूँ हवा कैसी चले, हवा जब चलानी होती है बहुत गर्मी होती है तो भाई बस थोड़ा सा काम करना होता है, पंखे का बटन दबाना होता है, बटन घुमाना होता है, जो मर्जी कहिए, भाई बात यह है हवा चले कैसे, घटा उठे कैसे, ये नहीं मालूम। लता जी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे, जैसे मौसम का हाल बताया जा रहा था।

0: जाने वही जाने राम जाने। भाई राम से याद आया, प्रभु राम का चरित्र जो है मंचित किया, मंचन हो रहा है उसके यानी रंगमंच पर। रावण भी आ रहे, कहते हमारे राम देखा कल, बहुत लोगों ने देखा और बहुत सराहा, बहुत सारे लोगों का संदेश आया, भाई अच्छा लगा। हमारे राम, आपके राम? अरे नहीं साहब, रावण भी कहता हमारे राम। आशुतोष राणा रावण की भूमिका निभा रहे हैं, कहते भाई राम तो सबके हैं, किसी के इष्ट हैं, किसी के भाई क्या कहे शत्रु है रावण के, किसी के आराध्य हैं, किसी के स्वामी हैं।
1: Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
0: साउथ ऑल ट्रेवल का एक संदेश भाई हम आपको याद दिला रहे हैं बार बार, और वो साउथ ऑल ट्रेवल वाले कह रहे हैं कि वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। कॉल साउथ ऑल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स। उनका नंबर है 02085748410 एंड दे आर एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit Herald. plastic.com
3: आपके सामने एक रेड बटन है,
4: दबा दिया,
3: नहीं दबाना था।
5: The madness is back, धमाल 4,
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा,
5: starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख and जावेद जाफरी, return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
7: लौड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
5: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
8: पता नहीं ऐसे dangerous situations में automatically आगे कैसे आ जाता।
9: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
10: Leicester Miller is back.
11: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performances.
10: Confirmed artists include Lember Hussein Puri, H. Dami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
11: Hosted by the team of Leica Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
11: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-180 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
12: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
1: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk.
13: Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.
0: Oh, और ये गीत आपको याद दिलाएगा सलमान खान की। नहीं साहब, एक और अभिनेता इस गीत से जुड़े हैं, आलोक श्रीवास्तव, नहीं आलोक नाथ भाई आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, 70 के हो गए हैं आज, 10 जुलाई 1956 में जन्मे थे। अब कौन है आलोक नाथ भाई? इस फिल्म में मैंने प्यार किया। हीरोइन के पिताश्री की भूमिका जो निभाते हैं और जो शर्तें लगाते हैं सलमान खान के सामने, वो आलोक नाथ आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न

मैंने प्यार किया फिल्म में जो भाग्यश्री के पिता की भूमिका निभाते हैं भाई, और भी बहुत सारे फिल्मों में आपने कैरेक्टर रोल्स में उन्हें देखा है, आलोक नाथ आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, ही इज 70 टुडे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे टू जन्मदिन मनाने वालों को भाई। और इसके अलावा भाई आज 10 जुलाई के दिन का और भी महत्व है। आपको बताएं कि एक भिखारी ठाकुर नाम के बहुत बड़े कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी रचनाओं ने समाज सुधार के लिए और लोक संस्कृति को नई पहचान देने के लिए बहुत गहन और रिच साहित्य लिखा। और भाई आज वन महोत्सव का समापन हो रहा भारत में ना, ये पेड़ लगाने का एक त्योहार शुरू हुआ 1950 में, वन महोत्सव आज उसका भाई समापन यानी आखिरी दिन है। उद्देश्य है इसका वृक्षारोपण यानी नए दरख्त लगाना, पर्यावरण का संरक्षण और माहौल को शुद्ध बनाए रखना। ये 10 दिन का त्योहार जो है आज समापन हो रहा है। और भाई आज के दिन के साथ और भी जुड़ी है कुछ यादें, आगे चलकर चर्चा करेंगे। फिलहाल तो ये गीत समेटे, मैंने प्यार किया। भाग्यश्री

0: किया। सूरज बड़जात्या की निर्देशन में बनी थी भाई ये फिल्म। और ये जो राजश्री की फिल्में होती है ना, इनका संगीत बड़ा हटकर होता है। संगीतकार थे राम लक्ष्मण।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और लीजिए साहब, लम्फाई के रेट्स मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। एक पाउंड के बदले टुडे दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 128 रुपीज, एग्जैक्टली पाकिस्तानी रुपए 373.18, श्रीलंकन 450.48, बांग्लादेशी टकाज 165.46 और अफगानी 87.22।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: Well, the gold is trading at the rate of 98.48 pounds per gram.
1: Specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
3: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: बताओ कितना हमसे प्यार है, और देशराज जी कहते हमें तुमसे प्यार कितना हम बता नहीं सकते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। और आपने भाई और भी जानकारी भेजी है, बहुत सारी फिल्मी जानकारी, जैसे हमारे बाली ब्रह्म भट्ट हैं फिल्मी विद्वान, वैसे आप भी बहुत कुछ जानते हैं फिल्मी इतिहास के बारे में, फिल्मों के बारे में। तो देशराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बता दें बहनों भाइयों, बाली ब्रह्म भट्ट होंगे आपके मेजबान 1 बजे की खबरों के बाद, और वो लाते हैं बहुत सारी फिल्मी सामग्री जुटा करके, तो उनका भी साथ निभाइएगा। आज 10 जुलाई को कहते हैं कि जोरा सैगल की पुण्यतिथि है। भाई एक बुजुर्ग अभिनेत्री, लेकिन यंग एज से वो मंच से जुड़ी रही, और बहुत सारी फिल्मों में वो लंबी बड़ी उम्र की एक महिला के रूप में आती हैं, पर छा जाती हैं अपनी डायलॉग डिलीवरी से। 27 अप्रैल 1912 में उनका जन्मदिन हुआ था और 10 जुलाई 2014 में उनका निधन हुआ। देखिए 98 बरस की उम्र में, तो 98 के 102 बरस की उम्र में भाई, हाँ, तो 102 साल की उम्र में जोरा सैगल का निधन हुआ। क्या बात है, उनकी ऊपर पिक्चराइज कोई गीत तो मैं नहीं बजा सकता हूँ, उनके बारे में ज्यादा जानकारी बाली भाई लेकर के आएंगे। इसके अलावा साहब नैना शाह भी कुछ सुझाव दे रही हैं, थैंक यू वेरी मच सर आंखों पर। और भी हमारे श्रोताओं के संदेश हैं भाई, जिन्होंने संदेश भेजे और मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पाया, उन्हें थैंक्स कहते हुए आगे बढ़ता हूँ। कार्यक्रम का समापन नजदीक है।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: Lister, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Lela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela और लॉन्ग दूधी 2.99 पर किलो। ऑफर्स वैलिड फ्रॉम 6 जुलाई टू 2 अगस्त एट फाल्कन कैश एंड कैरी, 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट, लिस्टर LE12JU एंड 2A रोलॉट सेल, लिस्टर LE54UN।
3: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: ਵੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਕਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
7: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
6: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
8: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
9: Hey, friends के साथ weekend party हो या खुद के साथ Netflix and chill, a देसी तड़का is total risk, है ना?
10: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
9: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
1: Ravi Sharma on Leica Radio.
0: और लीजिए साहब, आपसे इजाजत लेने का समय आ गया। खुश रहो, आबाद रहो, हमारे साथ रहो और हमारे बाद भी रहो।

0: And that was two beautiful songs. ये सब हंसने वाला मामला होता है. जैसे कि फ्राइडे है, इट्स अ ब्यूटिफुल सनी डे. There is FIFA World Cup going on, there is Wimbledon going on, and everybody is glued to the television and keeping it muted and listening to Laika Gold. Thank you so much. आपके सब मुझे messages मिले. प्रकाश सूथर जी ने मुझे एक बड़ी थाली भेजी. मैंने कहा नहीं, लंच के लिए नहीं, डिनर के लिए लूंगा मैं, क्योंकि ऐसी थाली मैं खाऊंगा तो सो पड़ूंगा यहीं पे. और जैस्मिन जी, थैंक यू वेरी मच. गोल्ड आफ्टरनून टू यू. एंड संतोष जी फ्रॉम हैरो. एंड सुनीता शर्मा जी, यस यस यस यस, उन्होंने कहा कितना लंबा गाना है मिस्टर इंडिया का. मैंने कहा हाँ, दैट्स अ पैरोडी सॉन्ग एक्चुअली. और सब मिला के गाने उन्होंने बनाया था कितनी खूबसूरती से. एंड देन रानी जी फ्रॉम स्लाव, एंड पैमी जी फ्रॉम स्लाव, एंड अरुणा एंड भूपेंद्र पटेल, शेखर जी, सहर जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल मैसेजेस टू किक ऑफ दिस ब्यूटिफुल फ्राइडे फॉर मी. मैं हूँ बाली ब्रह्मभट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स स्पॉन्सर्ड बाई जैमिन फूड्स, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, DAB, एलेक्सा, गूगल होम एंड laikagold.com. एंड इट हैपन्स टू बी द 368th डे ऑफ लाइका रेडियो मिडलैंड्स. लाइका रेडियो मिडलैंड्स पे अनिका, शी विल बी कमिंग इन प्लेस ऑफ राज पत्तन जी टुडे. एंड ऑफकोर्स हमारे प्यारे सैंडी शाह. What did I hear? मैंने सैंडी शाह का जैसा ही नाम लेता हूँ तब ऐसा आवाज आता है. Woohoo! Cheers! Yes, you're right. I will be cheering when he arrives here. Thank you very much. सुनते रहो गाने जिसमें हंसने वाली बात हो, या तो शब्द होगा हंसने वाला, जैसे कि मिलते ही नजर तुमसे हम हो गए दीवाने, है ना? नहीं, ये तो सेकेंड आवर में होगा, क्योंकि एक ट्रिब्यूट है. इतनी खूबसूरत ट्रिब्यूट है ऑफ ए वंडरफुल राइटर दैट इज रेयरली रिमेम्बर्ड बाय एनीबडी. एंड आई हैव एक्चुअली डिसाइडेड टू डू अ वंडरफुल ट्रिब्यूट ऑफ दैट ब्यूटिफुल राइटर, अ वंडरफुल राइटर हुज बर्थडे एनिवर्सरी इट हैपन्स टू बी 105th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ असद भोपाली.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you 127.6 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons is sponsored by Jaimin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
3: Lister, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, $7.49. Lela Medium Atta 10 kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, $24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, $10.99. And Falcon Paneer Box $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for $3.99. Mido Yogurt 10 kg, $8.99. Karela or Long Dudi $2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Lister, LE1 2JU, and 2A Rollots Hill, Lister, LE5 4UN.
4: Birmingham Indian Film Festival is here. Experience groundbreaking premieres, powerful documentaries, restored classics and the very best of British South Asian cinema at Midlands Arts Centre and Lockworth Cinema of Wolverhampton. Discover stories of courage, identity, motherhood, disability, love and change. Plus meet the filmmakers through exclusive Q&As and panel discussions. Don't just watch cinema, experience it. Book now at birminghamindianfilmfestival.co.uk. Radio partners, Laika Radio Network.
3: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
3: high appreciation
5: in Dubai.
6: Lester Mella is back.
7: And the stage is about to explode. Confirmed artist,
6: Lember Hussein Puri. Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
7: Hosted by the team of Laika Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
6: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
7: Arts Council England.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
9: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
10: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जैमिन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
9: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमिन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
6: Lester Mella is back.
7: And the stage is about to explode. Confirmed artist,
6: Roach Killer. Get ready for big tunes, big vibes and a massive live performance.
7: Hosted by the team of Laika Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
6: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
7: Arts Council England.
11: Laika Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Come on, England. Roar it. Score it. Bring the World Cup home. All the best to England from Laika Radio Network. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
12: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: दुनिया हमी को मत घेर जरा,
1: हम सब चोर रहे समझ का है फेर जरा।
0: चोर सारी दुनिया हमी को मत घेर जरा,
1: हम सब चोर रहे समझ का है फेर जरा।
2: चलता है जले कोई यहाँ है फिकर किसे,
3: आज का ठिकाना करो कल की खबर किसे।
4: हमको हंसते जमाना चलता है, चोर बनो या

What a beautiful song and a meaningful song. और फिल्म थी कठपुतली. आगे जो गाना है मैंने जो चुना है आपके लिए इज खून भरी मांग. नितिन मुकेश और साधना सरगम इन्होंने गाया है हंसते हंसते. अभी होता क्या है कि सारे गाने जितने भी आपने सुने मोस्ट ऑफ देम आर रफ़ी साहब और किशोरदा, तो उनके गानों के बाद एक नितिन मुकेश का गाना ज़रूरी है. सो सुनते जाइएगा, लुत्फ उठाते जाइएगा. एंड नेक्स्ट आवर वी गोना रिमेंबर असद भोपाली, अ ग्रेट राइटर. उनकी स्टोरी सुनकर आप प्रभावित हो जाओगे. Yes, next hour, a man who wrote so many songs, and unka climax jo hoga, that'll bring tears to your eyes. Asad Bhopali, next hour.

0: कितने प्यारे के दो गाने और वैरायटी देखो लिखने की जो वर्सेटिलिटी आप नजर आती है इन दो गानों में। उस्तादों के उस्ताद 1963, अपना बना के देखो फिल्म 1962 की, और रफ़ी साहब ने इतनी खूबसूरती से गाया और रवि का संगीत था इसमें, राज़े दिल उनको उनसे छुपाया ना गया। एंड देन मिलते ही नज़र तुमसे हम हो गए दीवाने, वाह वाह वाह, वो भी म्यूजिक डायरेक्टर रवि का संगीत। लेकिन गाने लिखे किसने उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक मुंशी अहमद खान साहब थे, ही वॉज अ टीचर ऑफ अरेबियन एंड पर्शियन लैंग्वेजेस। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे असदुल्ला खान को ये जबानें बोलनी लिखनी पढ़नी सिखाई। असदुल्ला खान, हम उनको जानते हैं विद द नेम असद भोपाली बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन भोपाल, हेंस असद भोपाली। नाउ उनके बारे में जितना भी कहूं उतना कम है। फादर, जैसे मैंने कहा, द टीचर ऑफ अरेबियन एंड पर्शियन लैंग्वेजेस मुंशी अहमद खान। एंड उनके भाई जो थे कमर जमाली, ही वॉज एन उर्दू पोएट। सो पूरा माहौल ही ऐसा था जहाँ पे पोएट्री और खूबसूरत लैंग्वेजेस घर में थी। अब कहानी यहां से शुरू होती है। वंस अपॉन अ टाइम फाजली ब्रदर्स, दे वर फिल्म मेकर्स, उन्होंने एक फिल्म बनानी थी दुनिया, और उनका जो लिरिसिस्ट था आरजू लखनवी, उन्होंने दो गाने लिखे फिल्म के, एंड देन ही माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन। सो फाजली ब्रदर्स वर स्टक, दे वर लुकिंग फॉर न्यू लिरिसिस्ट्स फॉर देयर फिल्म दुनिया। उनके एक दोस्त थे सुगम कपाड़िया। सुगम कपाड़िया, ही वॉज अ बिजनेस मैन हु ओन्ड फ्यू सिनेमा थिएटर्स, एंड भोपाल में उनकी एक इनका एक सिनेमा हॉल था। तो उन्होंने फाजली ब्रदर्स को कहा कि देयर वर मैनी गुड पोएट्स इन भोपाल, और वहाँ पे मुशायरे बहुत होते रहते हैं, तो उन्होंने एक मुशायरा ऑर्गेनाइज किया फॉर देम एट हिज भोपाल टॉकीज। भोपाल टॉकीज में मुशायरा चला, एंड द डे वॉज 5th of May 1949, याद कीजिएगा। दे वर इम्प्रेस्ड सो मच, असद यानी के हमारे असद भोपाली की जो पेशगी थी उस मुशायरे में, उनसे वो बड़े प्रभावित हुए। एंड द 28-year-old असद then traveled to Bombay on 18th of May. That was 13 days later in 1949 to become a lyricist in the great film industry. Asad wrote two songs for Fazli Brothers. Do gaane inhone likhe, and then in 1950, aged 29, young man, he wrote songs for a couple of films. So far his songs were sung by रफ़ी साहब, सुरैया, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम वगैरह वगैरह। तो बड़ी ब्रेक तब आई जब बी आर चोपड़ा ने, दैट्स बलदेव राज चोपड़ा, बी आर चोपड़ा ने फिल्म अफसाना बनाई, विच जिसकी स्टोरी स्क्रीन प्ले इट वॉज ऑल डन बाय आईएस जौहर, हमारे आईएस जौहर, दैट्स राइट। अफसाना फिल्म वॉज मेड इन 1951, जिसमें अशोक कुमार वॉज इन अ डबल रोल, ट्विन ब्रदर्स, सो इट स्टार्टेड अ ट्रेंड ऑफ ड्यूअल रोल्स दैट पर्टिकुलर फिल्म। म्यूजिक वॉज बाय हुस्नलाल भगतराम, और वो फिल्म में इन्होंने गाने लिखे, ही रोट 5 songs। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने जब म्यूजिक दिया पारस मनी, इनकी डेब्यू थी, पहली फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की 1963, ही क्रिएटेड 3 hits। एक गाना था वो जब याद आए, बहुत याद आए, हंसता हुआ नूरानी चेहरा और रोशन तुम ही से दुनिया। देन लॉट्स ऑफ फिल्म्स विद उषा खन्ना. 1949 से 1990 तक ही रोट अराउंड 400 सॉन्ग्स फॉर ओवर 100 फिल्म्स. बट सैडली ही वॉजंट एज सक्सेसफुल एज मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, राजेंद्र कृष्ण, जानिसार अख्तर, क्योंकि उनको जो फिल्में मिलती थी देवर लो ग्रेड फिल्म्स एंड उनको पूरी फिल्में नहीं मिलती थी, कुछ दो गाने तीन गाने कोई फिल्म में. हाई एंड फिल्म्स में कुछ नहीं मिला इनको. फिर क्लाइमैक्स आया इन 1989. अब इनकी उम्र कितनी थी? 68 साल की उम्र. सोचो कि एक 28 साल का नौजवान जिसने बॉम्बे में कदम रखा, नाउ ही वॉज 68 आफ्टर 40 ईयर्स. 40 ईयर्स आफ्टर हिज एंट्री इन टू बॉम्बे ही रोट सम सॉन्ग्स फॉर फिल्म मैंने प्यार किया. जी हां, वो गाने लिखकर ही सफर्ड पैरालिटिक स्ट्रोक. सो उनकी फैमिली उनको ले गई भोपाल. 1990 में ही गॉट अ फिल्म फेयर अवार्ड बट ही कुडंट अटेंड. ही डाइड ऑन 9th of June 1990 at the age of 68. He could not collect that award. 35th Filmfare Awards it was. Best lyricist for film Maine Pyar Kiya. Gana tha Dil Deewana Bin Sajna Ke Maane Na. Itna khubsurat gana aur ek award jo mila unko zindagi bhar ke kaam ka, usme wo award le nahi paaye. We are remembering Asad Bhopali.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 British sterling can get you up to 127.6 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: This is Leica Radio.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: My God, FIFA fever, and I'm suffering from that fever as well. FIFA World Cup 2026 has gone into the quarterfinals, and yesterday France beat Morocco by 2-0. And today it's going to be Spain versus Belgium at 8 p.m. And on Saturday, 11th July at 10 p.m., it's going to be Norway versus England. And Sunday at 2 a.m. is going to be Argentina versus Switzerland. Wow. This is going to be so exciting. And don't forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
4: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pulp, Pani Puri and Sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
5: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
6: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: आपके सामने एक red button है.
8: आह, दबा दिया.
7: नहीं दबाना था.
8: The madness is back. धमाल 4.
9: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
8: Starring Ajay Devgan, Arshad Warsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
10: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
8: Watch the biggest family entertainer धमाल 4 in cinemas now.
11: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आके कैसे आ जाता.
12: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show, Sare Gama Pa, is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
13: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
13: high appreciation
14: in Dubai.
6: A September Paris ma itihas lakhai rahyo che.
13: BAPS mandir નો ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
6: યુરોપ ના 3-9 દિવસ ના ટૂર,
13: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
6: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
13: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
6: કોલ 020-8900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
13: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
15: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at Three Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton Three Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
16: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, and survivors desperately need your help. Go to dec.org.uk to donate, or text radio to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. Thank you.
17: You're both on the same road. Same tarmac, same rules. Just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way. They're on their way. Just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
18: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4-5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
1: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जिसने कवालियां लिखी और चटपटे गाने भी लिखे, इन्होंने ऐसा सैड गाना भी जो लिखा. व्हाट अ वर्सेटाइल आर्टिस्ट.
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली.
2: हैप्पी हलवाई ब्रिंग्स योर टेस्ट बड्स ओडल्स ऑफ हैप्पीनेस विद ऑथेंटिक गुलाब जामुन, रसमलाई, मोतीचूर लड्डू एंड मच मोर. विजिट happyhalwai.com.
1: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
0: And अब जो मैं कहने वाला हूँ उसका मजा ही अलग है. आज 5:30 बजे मैं रवि शर्मा जी को मिलूंगा वहां इवेंटिम अपोलो पे. क्यों? क्योंकि देर इज दिस ब्यूटिफुल स्टोरी गोइंग ऑन. यस, हमारे राम वहां इवेंटिम अपोलो में ये शो जो चल रहा है उसकी बात ही कुछ अलग है. और Leica Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Ragasan. Details at leicaradio.com.
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन Leica Gold Radio, Leica Radio Greater Manchester एंड Leica Radio Midlands पर.
1: LYCA. This is Leica. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Yes, Southall Travel is pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208-574-8410. At all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Extra podcast update.
0: We got podcast episode 24 and the title is East African Asians. Yes, East African Wanainchis. Episode sheds light on the roots and identity and journey of East African Asians, from entrepreneurship and community spirit to overcoming discrimination. Leica Extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here. ये है Leica Radio.
4: Leica Radio. You're listening to Bali Brahmbhatt in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
5: Hero कभी वापस नहीं आए.
6: Did you hear that?
7: 1995 पंजाब, जहाँ एक तरफ पुलिस फोर्स मिलिटेंसी हटाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे.
6: Get ready for one of the boldest and darkest chapter of India's history.
8: मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार से सीधे पूछती हूँ, कहाँ है जसवंत सिंह?
6: सतलुज on Hindi Z5.
9: यहाँ जो हो रहा है वो दुनिया को बताने का टाइम आ गया है जैसी.

0: This hour, all the songs that you heard were written by Asad Bhopali, Asadullah Khan. He was born in Bhopal. Aaj unki 105th birth anniversary thi. And ye gaane pe unko award mila tha.
1: Are you listening? Leica Radio is now available across Wolverhampton on DAB.
0: ये भी गाना उन्होंने लिखा, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने गाया. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आसद भोपाली की लिरिक्स है. रूप तेरा मस्ताना 1972 की फिल्म थी. बहुत प्यारा गाना है. इट्स आल्सो वेरी मेलोडियस. एंड नेक्स्ट आवर व्हेन वी प्ले अ सॉन्ग ऑफ आवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक शकील बदायूनी. बड़ा अच्छा लगता है व्हेन आई टॉक अबाउट राइटर्स लिरिसिस्ट्स. दो गानों को जन्म देते हैं. आसद भोपाली

0: basmati rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
2: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
1: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
3: लाइक रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन.
4: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
5: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
3: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
0: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: अरे हस्ती हमसे उधार ले लो मस्ती, ये पता कौन बोल रहा है? I'll tell you in a second.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: जी हाँ, हमारी प्यारी लिसनर संतोष जी ने मुझे बताया. जी हाँ, संतोष जी ने क्या बताया? उन्होंने कहा, इट इज द 90th बर्थडे ऑफ माय एल्डर सिस्टर ललित बेन. इट्स टुमारो, सो वी आर हैविंग अ बिग पार्टी टुडे. एक्चुअली हर बर्थडे इज ऑन 15th ऑफ जुलाई. Because some of the family members, you know, are going on holidays. That's why they are celebrating it tomorrow. And we would like to say happy 90th birthday to Lalit Ben, sister of Santosh Ji. Congratulations and may God give you a long, happy, healthy life. And yaro, nilam karo susti aur ललित बेन जी से उधार ले लो मस्ती. हैप्पी बर्थडे टू हर. अब हम विश करते हैं रवि जी की डॉटर रागिनी को हैप्पी बर्थडे करते हैं. In a second.
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
1: This is Like a Gold across Greater London.
0: Happy birthday to you. Happy birthday to you.

बेटा हो या बेटी, बाप हमेशा बेटी को बेटा कहते हैं। सो ये गाना दोनों को सूट करता है, बेटा हो या बेटी, सूरज कहूं या चंदा।

0: Okay, so that is the legend, that is Falguni Buttock. Of course, that is Mene Bayal Hechangai. I mean, if you've been to a few weddings this summer, you would have heard this song. It has been absolutely everywhere. Not complaining though, absolutely love it. Okay, so it is a throwback weekend on Laika Radio, Greater London this weekend. We are throwing back to the biggest modern day classics this Saturday and Sunday. So listen and get in touch with your favourite presenters. Laika
1: Radio. Drive is sponsored by Pepe's. A new Harissa Honey Melt, released for a limited time only. Try one today. Rich Harissa, mixed with sweet hot honey.
2: आपके सामने एक रेड बटन है
3: दबा दिया
2: नहीं दबाना था
4: द मैडनेस इज बैक धमाल 4
5: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा
4: स्टारिंग अजय देवगन अर्शद वारसी रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी रिटर्न इन धमाल 4 डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार वॉच द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनर धमाल 4 इन सिनेमाज नाउ
6: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता
7: हीरो कभी वापस नहीं आए
8: डिड यू हियर दैट
9: 1995 पंजाब जहाँ एक तरफ पुलिस फोर्स मिलिटेंसी हटाने में लगी हुई थी वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे
10: गेट रेडी फॉर वन ऑफ द बोल्डेस्ट एंड डार्केस्ट चैप्टर ऑफ इंडियाज हिस्ट्री
11: मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार से सीधे पूछती हूँ कहाँ है जसवंत सिंह
10: सतलुज ऑन हिंदी Z5
12: यहाँ जो हो रहा है वो दुनिया को बताने का टाइम आ गया जैसी
13: Lester Miller is back.
14: And the stage is about

0: bringing the hits, the energy, and those proper live stage vibes.
1: Hosted by the team of Lyco Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
0: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council,
1: Arts Council England.
2: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
3: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
2: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
4: Lyco Radio Network proud hospitality partner Ragasan New hits on Lyco Radio.

0: करी।
1: सुनो लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। पंजाबी दिस इज लाइका रेडियो, पार्ट ऑफ द लाइका रेडियो नेटवर्क। नंबर 5।

0: such a big track, isn't it? Miss Pooja, PBN. Big shouts to Rishi Singh, Radio Ali. Aapki aankhon ke aashiq aur deewane to pehle se hi hum ho chuke hain. गाने के जरिए बताने की जरूरत नहीं थी। हाय हाय क्या बात है, मैंने तो ऐसे ही अच्छा फ्राई फायर क्रैकर चला दिया, फ्राई फ्लैश फायर चला दिया, मैंने तो इतना गहरा सोचा भी नहीं था।
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: Now, you know, I've got to say, it's been a really fascinating

0: Breaker Radio.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: आपके सामने एक red button है.
4: दबा दिया.
3: नहीं दबाना था.
5: The madness is back. Dhamal 4.
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
5: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4. Directed by Indra Kumar.
7: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
5: Watch the biggest family entertainer, Dhamal 4, in cinemas now.
8: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता.
9: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
10: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 Belgrave Road, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर.
0: Leica Radio. Time for another Leica Love Classic.

0: ये है लाइका रेडियो, लाइका रेडियो। भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड।
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
5: Bollywood romantic hits throughout the night.